जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।

0: Teşekkür ederim.
1: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: माय ब्रदर, आई एम द मिरर ऑफ माय ब्रदर एंड वी केयर फॉर वन अनदर। टू अब्यूज हिम इज एन इविल एक्ट, टू फाइट हिम इज कुफार इन फैक्ट। His life and honor I do hold sacred, like the prophet told. This includes possessions too. It is what all of us should do. My brother, I do not defame, nor call him an offensive name. In dealings, I am always fair, to show him that I truly care. And how could I ever backbite and harm him or deny his right? I love for him what I love for me, though sometimes we do not agree. He and I should work together and be united now and forever. For one thing must be understood, all Muslims form a brotherhood.
0: Newton community ki awaaz, aapka apna radio station, Inspire FM.